0: महत दिवस रात दोयदा दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाच धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर
1: जिन्नी नाम ध्याया

सिमरन सोई पुरख अचल अवनासी, जिसमृत दुर्मत मलनासी, सतगुर चरण कमल रित तारन, गुर अर्जुन गुण सहज विचारन, गुरु रामदास कर क्यों प्रगासा।

लोक मथे रखने वास्ते तेरे चरणा ते पहुंच सदके अग्नि गोविंद सिंह तेरा ही करना शुक्र है जे गुरु के प्यारे गुरु के सिख दीदार मथे करने वास्ते जान ते फिर इस मन ना जान इस ख्याल ना जान के धन सो दे इस जहां तू वसिया मेरे सजन मीत पूरा रहे मेरे सजन ते मीत मित्र घनेरे करत की मेरा धन सो मीत धन सो दे मेरे सज्जन ते मीत।

0: धोखा बेटा माफ करना।
1: नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद को नानक जगत में जप्यो गुरु मंत्र।
0: नाम परमात्मा का श्री वाहिगुरु का सदी भी रहना ही है ते जेड़े भी ओदा नाम लेंदे ने जिवें मुख तौर ते एक मैं हफ्ते तो कलड़ी आप जी ने सुनाई है संत भूरी वाले गंगा दास जी आदर जो बाबा जवाहर सिंह साहब जी भाई साहब जवाहर सिंह साहब जी और परम परम परम आदर जो राजा साहब जी नाम रहे हो साधु रहे हो ये जिन्ना चिर चंद सितारे सियारे हैं धरती है आकाश है ये रहन गई और इन्हां दियां यादां इसे तरह ही मनाई जाएगी। दूसरी गल जेड़ा मास्टर जी होने अपना विचार आरंभ करने वेले कीती है कहंदे ने अरदास कीती है अरदास करनी है पर एकाग्रता नाल संबंध रखती है। सुनना जी उर्दू दा सज्जन खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है एवं ओपरी असी भी अरदास करते। मेरा एक सज्जन ग्रंथी सिंह है बड़ा लायक है बहुत लायक है ओदे बलहार जाओ कहंदा मैं बाहर जाके की करना एदां दा ही काम होना ना बाहर इत्थे ठीक है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਨੋ ਤਨੋ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਪੁਰਸਕੂਨ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਂ 19 ਕੁ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ ਅਗਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो अर्ज करना खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है मुश्किल बड़ी यही है कि बड़ी मुश्किल से होती है। एकाग्रता मांगता है मन चित कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड चाहिए है तो जो वो हो जाएगी तो फिर बंदा आपे इस ख्याल का बन

मेरा तन गुरु नानक पाठ है, कलयुग की जीवन के उद्धार करने वास्ते जा रही सोना कला संपूर्ण चलिया अनंत कला हो ठाकुर करे।

गर्व ना कीजे नानका मत सिर आवे। करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर दे जवानी दा, ए जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली जा। ए झूठा हुकूमत का माण कर दे। इस संसार च वड़े वड़े राजे महाराजे आ गए जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का माण करदा यह भी झूठा हो। माया एक तो चलता पानी यह माणवी की धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता, चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं, याद रख एक दिन पछता है। साहबां दा पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने सुने, पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर तो रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह दे चरणां ते रोण लग, पातशाह मेरू बख्श लो मैं पापी, मेरे कोलों भुल हो गए, अपने चेहरे के दाग जेड़े दिखते जे शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हां दा पता ता लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए। महापुरुषों का जीवन साफ शीशा होता। अज धन गुरु नानक पातशाह जी धर्मकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही, घुब्बा मार के रोई जाता, कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है नाले पर पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी संगत।

रो लिया रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरणा रुत हो पातशाह बस अदूर कहन लगे मरदानिया बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तकिया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र नाले बाणी पढ़िया नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को जो माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहता है पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज ये भी कोई पूछने वाली गल है चलो हूं तोड़ा सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदानिया अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह हजूर कह लगे मरदानिया अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्ला भी सिखी गल्ला की सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरणा ते कहते पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आ है फिर जिना संभाल लेता है वह पाए करोड़िए बख्शिश होगी तोड़े उत्ते भी गुरु की बख्शिश बख्शिश वाला समा पूजे बख्शिश तो शरीर ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही तो आप जिन्होंने भागा बख्शिश दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़ी जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा करोड़िया ये मालिक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसी पासे उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई पाई कीर्तन का अमृत पी तो ये दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगी मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द ही अकेली पटपन मरदानिया ने रवाब चुकया ते बाबे ने सोने गले चो ये सब्जता की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: जो गुरु का देश सहबा ने करोड़िए ते बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है और लोग सुहेले हर पल आते मेले और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साए हुए अमरीकन सिंह गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई ओदे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रोटीन चल रही है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने उचो कीर्तन भी भेज शब्द का आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु Thank you.

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनू धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर भरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नख तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहदा जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जांदा है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन विच ए राग सिंधी आस

रहने पौन पानी में संत जन सूर्य उतार सभी धरती माल तन पर संत जन नाम तो सह ज्ञान में होगी भय गया जब काल मुद्दा पहला वाइन चले दर्शन गुड़ पैर लाइन फिर सिर उठो ड्रामा चटे पाए वे खेलो कसे कर

0: खाए पार बोलू चखा चकी चक थल मरुले बहुत अनंत लागू मात आनिया का पखी पौधिया लेना सा
1: ਨਾਚ ਨੱਚ ਸੇ ਜਲੇ ਸਰੋਟ ਨਾ ਜਾਈ ਸਦਨ ਹੋਵੇ।

दूसरे शब्द शरण करो जी, भरत नारद पदार्थ वसा पर वाणी गुरबाणी लागे तिन हस्ते है।

जोड़ी का बड़ा संबंध है। ये जोड़ी वाला जो कमजोर होवे ना तो रस जड़ा है उसे बहुत फर्क रह जाता है। जोड़ी वाला प्रवीण होवे तो गायन वाला भावे ढिला भी होवे ना उसका रस पूरा हो जाता है। जिवें हुण मैं ढिला तो भाई साहब मेरे उपर सवार ने असले तो हुण मैं तुहानू दो शब्द श्रवण कराने हैं। एक तो सिंह साहब का हुक्म मनना ते एक मेरी अपनी मर्जी है। सिंह साहब का जिहड़ा हुक्म है वह है पड़ताल का। तो पड़ताल उत्थे बैठे बैठे मेरे ध्यान च आया कि चार ताल पड़ताल विच गाने हैं। तो चार ताल का मतलब समझ लो चार तालां दे विच चार तालां विच जिहड़े किहड़े ताल एक ताल दो ताल तीन ताल चार ताल चार ताल हो गए। जे असीं कहीए जी चार ताल विच पढ़िया ताल तां एक ही पढ़िया तो चार किस तरह होया जी। तो चार ताल है एक ताल दो ताल तीन ताल और चार ताल। तो शब्द भी मैं उत्थे बैठ के चुनिया उस दीआं पंक्तियां भी चार ही विसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मुल पाई ना को वैरी ना ही बेगाना सगन

श्रवण करो। पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे राग योग

ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात पर आई। जब ती सात संगत में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई। जो कब की नो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहे प्रभु कह, देख देख नानक भिखसाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, यह तराना जेड़ा है यह अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इतने बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहने लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असां वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ। यह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहते जी ये सानू लिखा दियो तराना, असी तो इस तरह की बंदिश कभी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को यह दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में नमस्कार की। इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना, साहब सब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ के विद्वान ने, कभी आप दर्शन करना तो सदर दानी दानी तुम रानी तल तुम तिरना, सदर दानी दानी तुम रानी तल तुम तिरना, तल तुम तिरना, तल तुम तिरना, तल तुम तिरना। जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज मत्था टेकना जे, तुम दानी हम भिखारी है और तुम दानी है। कदर दानी दानी तुम दानी तरल तुम दिना, तरल तुम दिना, तरल तुम दिना, कदर दानी दानी तुम दानी तरल तुम दिना, तरल तुम दिना, तरल तुम दिना, कदर दानी।

चार पंक्तियां हैं। धागर दी धर्म दृष्टांत धागर दी देम दिरना धागर दी धर्म दृष्टांत धागर दी देम दिरना धागर दी प्रिक्ते बन

नक्षत्र वीणा का यह स्वर है दीन, बिरना जो है यह सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितारे च वजद और दीन जड़ा है विचित्र वीणा में वजद, यह साजा के दर्शन कराए ने।

पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत इस रात तो दाई दया खेले गर्मी अप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम गए मसक नानक

इतनी सेवा प्रवान कर लो धनता दे जो कोई जोगी आप साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी की जूरी हजर विच बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा से भावना ना सबल करो सरदास भी अपने उच्चे भाग संबंध है आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब के रागा के शौकी है नहीं तो ज्यादातर गुरुद्वारा फिल्मी कीर्तन चलता है जिन्होंने कहने से वे वे रागी हैं संत बनते हैं सब फिल्मी टूना गा रहे हैं महाराज बख्श कर सारे साल गुरु के बख्श बराबर रखने कीर्तन सुनने की श्रद्धा बख्शन आओ अंत सरबत माई भाई जितने गुरु चरणा बैठे हो छोलियां लड़के यही अरदास बेनती जो दी करनी है अकाल पुरख अगे हे सदा शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी आप जी कृपा करो साड़ी छोलियां अपने पवित्र नाम की खैर पाओ जपो सारे कोई

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

बंदारा अज कह दे गम। मैं श्री वाहिगुरु जी का दिन रात सिमरन करता रहा। भाई साहब जी ने एक होर बहुत ही प्रिय वचन आख्या है, कहंदे ने दुनिया विच संसार विच इस जगत विच इस इंसान नू हर तरह की जरूरत है। हर कस भाव हर इंसान, हर कस वजह नशबो नमामे खाहद, असपो शुत्रो फीलो तिलामे खाहद, हर कस बराए फेश चीजे खाहद, गोया से खुदा याद खुदा में खाहद। इसका पंजाबी भी तर्जमा एदा